0: एंजॉय किया है। गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नायर अपन निर्वाणा नाइट्स। एंड दूसरी तरफ सोशल मीडिया के गलियारों में एक नया कैट फाइट यानी कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, जो कि काफी आम है और इन वॉर्स का कुछ होता नहीं है। मैं ये कह रहा था कि मशहूर सिंगर बसीन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर पर सीधे और बेहद तीखे तंज कसे है। दरअसल इन दिनों भारत में नीट परीक्षा को लेकर चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों पर भूमि पेडनेकर ने एक डिप्लोमेटिक बयान दिया था, जिस पर भड़कते हुए बसीन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि अगर आपके पास सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो सीधे तौर पर चुप रहा करो। अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए छात्रों के मुद्दे का इस्तेमाल करना बंद करो। ये पोस्ट इस समय इंटरनेट पर ऐसी छाई है। और एक कैट वॉर कुछ नया नहीं है, कुछ नहीं होता है कैट वॉर से, कुछ भी नहीं होता है। आप देखना दो तीन दिनों के बाद कुछ देखने नहीं मिलेगा। एंजॉय कीजिएगा अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: आज का प्लान क्या है, सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक, प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव मॉरिसविल, कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार

सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड सिनेमा लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। खबर यह है कि इस अगस्त के महीने में बॉक्स ऑफिस पर पूरी 14 बड़ी और धमाकेदार फिल्मों का मेला लगने जा रहा है। परसों यानी 7 अगस्त को ही सबसे बहुप्रतीक्षित कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म प्रहार द उज्ज्वल निकम स्टोरी थिएटर्स में रिलीज हो रही है, जिसका ट्रेलर पहले ही धूम मचा रहा है। इसके साथ ही इमरान हाशमी के फैंस के लिए भी एक गजब का सरप्राइज है, क्योंकि पूरे 19 साल के लंबे इंतजार के बाद उनकी आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल आवारापन 2 इस महीने बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एंड आवारापन 2 का मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा जाहिद जो सिंगर है जिन्होंने आवारापन के गाने गाए हैं, उनके बिना ये फिल्म अधूरी है। और बहुत ज़्यादा वार इस फिल्म के बारे में भी देखने मिल रहा है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: अभी कोर्ट के ऊपर फिल्म की बात छेड़ ही दी है तो कहानी भी कुछ आज इस तरह की है। ये कहानी हमारे इसी नॉर्थ कैरोलिना और ट्रायंगल एरिया के न्यायिक और कानूनी इतिहास से जुड़ी है, जो इन दिनों इंटरनेट और स्थानीय कम्युनिटी की चर्चाओं में फिर से खूब वायरल हो रही है। ये कहानी हमें रिश्तों की असली अहमियत, उनके बीच के विश्वास, मान सम्मान और सबसे बढ़कर वफादारी के बारे में एक बहुत बड़ा और कभी न भूलने वाला सबक देती है। बात कुछ ऐसी है कि पूरे अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना उन चुनिंदा और गिने चुने राज्यों में से एक माना जाता है जहां आज भी सदियों पुराना एक बेहद अनोखा कानून पूरी तरह से वैध लागू किया जाता है, जिसे कानूनी भाषा में एलिनिएशन ऑफ अफेक्शन कहा जाता है। अगर मैं हमारे सीधी लैंग्वेज में बात करूं और सरल भाषा में समझाऊं तो इस कानून का सीधा मतलब अगले सेगमेंट में बताता हूं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

कानून का सीधा मतलब होता है दूसरों का हंसता खेलता घर उजाड़ने या किसी की शादीशुदा जिंदगी को जानबूझकर बर्बाद करने के लिए। अगर आप रेडी है तो आपके खिलाफ ही कानून सख्त है। जानते हैं कहानी क्या है? इसी ऐतिहासिक कानून का इस्तेमाल करते हुए कुछ समय पहले यहाँ हमारे ट्रायंगल एरिया के ही एक जाने माने और बड़े बिजनेसमैन ने लोकल कोर्ट में अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दर्ज किया था। उस पति का अदालत में ये गंभीर आरोप था कि वो अपनी पत्नी के साथ पिछले कई सालों से बेहद खुशहाल और बहुत अच्छी वैवाहिक जीवन स्पेंड कर रहा था, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति ने यानी उसकी पत्नी के प्रेमी ने अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर उनके हंसते खेलते वैवाहिक जीवन के बीच आकर दखल दिया, उसकी पत्नी को बहलाया, फुसलाया, उसे गुमराह किया और उनके बीच के बरसों पुराने प्यार और अटूट विश्वास को पूरी तरह ख़त्म करके उनका पूरा हंसता खेलता घर और परिवार तबाह कर दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: वक्त में जब इस अनोखे और दिलचस्प मामले की हफ्तों तक गहन सुनवाई चली, दोनों पक्षों की तरफ से तीखी दलीलें पेश की गई और सारे सबूत देखे गए, तो एंड में जज साहब ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसने न सिर्फ उस कोर्ट रूम में बैठे लोगों की बल्कि पूरे देश के कानूनी जानकारों को हैरान कर दिया। अदालत ने उस प्रेमी को एक खुशहाल शादी को दुर्भावनापूर्व तरीके से तोड़ने के लिए और हंसता खेलता परिवार उजाड़ने के लिए पूरी तरह से दोषी पाया और जज साहब ने मुआवजे के तौर पर उस प्रेमी पर पूरे $8.8 मिलियन का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बिल्कुल सही सुना, 8.8 बिलियन डॉलर। यानी अगर मैं उसे आज के भारतीय रुपयों के हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो यह रकम बैठती है करीब 73 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन, जब ये खबर पहली बार मीडिया और अखबारों में छपी तो सोशल मीडिया पर एक तहलका मच गया, लोग दंग रह गए और इंटरनेट पर हंसते हुए और हैरान होकर तरह तरह की कमेंट्स करने लगे कि भाई किसी का दिल तोड़ने की, किसी के विश्वास को उजाड़ने की, दूसरों का बसा बसाया घर उजाड़ने की इतनी भारी कड़क कीमत तो आज तक इतिहास में शायद ही किसी ने चुकाई होगी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें सीख देती है कि किसी के जज्बा तो उनके परिवार और उनके पवित्र वैवाहिक रिश्तों का सम्मान करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में वफादारी, ईमानदारी और सच्चे विश्वास से बढ़कर कोई दूसरी दौलत या तिजोरी नहीं होती है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा पक्का दिस।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: क्या हुआ? अभी तक यही सोच रहे हो कि 73 करोड़ रुपए वो इंसान ने कहाँ से लाए होंगे? मैं यही कह रहा था. वेल, ऐसी चीज़ों की तो कोई कीमत ही नहीं होती है. अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते हैं, किसकी शादीशुदा लाइफ को स्पॉइल करते हैं, तो कीमत तो नहीं काउंट की जा सकती है. लेकिन उसके बाद वो इंसान ने कितनी कीमत चुकाई, बाद में क्या हुआ, आई डोंट नो. अगर मुझे पता चलता है तो मैं डेफिनेटली मेरे प्यारे लिसनर्स के साथ ये चीज़ को शेयर करूँगा. लेकिन भलाई इसमें ही है कि अपने अपने परिवार के साथ खुश रहिए, दूसरों के परिवार पे टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है. मैंने देखा है बहुत सारे जगहों पे कि कोई कोई इंसान रहते हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, वो दूसरों के परिवार में टांग अड़ाते हैं. दूसरों का परिवार, मतलब क्या पता लोगों के दिमाग में क्या आता है. इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक सेफ डिस्टेंस रखिएगा टॉक्सिक लोगों से भी. एंजॉय करते हैं अगला ये गाना.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा.

0: तो जैसे ही हमारा कहानी वाला सेगमेंट ख़त्म होता है, सेगमेंट रहता है शायरी का, तो पेश है अगला शेर मेरे सारे प्यारे लिसनर्स के लिए। चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी का सफ़र है, चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी का सफ़र है, यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी और नया सवेरा मिलता है, यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी और सवेरा मिलता है। थका दे चाहे दिन भर की मंडे ट्यूसडे की ये भाग दौड़, पर शाम को अपनों के साथ ही सुकून का बसेरा मिलता है। मैं यही कह रहा था कि थकान, भाग दौड़ ये चीज़ें चलती है, चलती रहेगी, और उसके बाद जब आपके घर पे पहुंचते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स आपका इंतज़ार करते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो शाम को अपनों के साथ ही सुकून का बसेरा मिलता है, ये मेरा कहने का मतलब है। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आपने एंजॉय किया ये गाना जो कि इस हम डे की वाइब बनाने के लिए काफी था। काफी से याद आया, कॉफी वगैरह कुछ पी रहे हो आप या चाय, अदरक की चाय पे चल रही है चर्चा। हम डे मतलब वेनसडे, जो वीकेंड के पहले एंड वीकेंड के इंतजार में करता है, ऐसा वेनसडे आज है। मैं यही कह रहा था, अगर आप घर जा रहे हो और चॉकलेट अगर आप लेते हो, चॉकलेट लेने के बाद आपके लवन को आप चॉकलेट गिफ्ट करते हो, तो उसके बाद जो खुशी उनके चेहरे पे आप देखोगे वो अप टू द मार्क रहती है। कभी कभी ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो रिश्तों में मिठास लाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकती है। ट्रस्ट मी, छोटी छोटी चीज़ें ये करना ही चाहिए बीच बीच में यार, तभी जाके तो रिश्ता जो है वो मजबूत बनेगा। एंड करते रहो, अच्छा लगता है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।
2: लाओगे

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। सात से दस में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से एंड एप्पल प्ले स्टोर से। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ऐप में जाना है, टाइप करना है रेडियो नायरा, आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। एंड ऐप मिलने के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं हमारे आरजे से एंटरटेनमेंट से भरपूर शो एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप हमारे रेडियो नायरा को एंजॉय कर सकते हैं, बस शर्त एक ही है कि आपका नेटवर्क जो है वो काफी अच्छा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस तरह से हमारे रेडियो नायरा को, इसी तरह से निर्वाणा नाइट्स को आप प्यार दिया करो, बहुत अच्छा लगता है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। 7 से 10 का ये टाइम पंख लगा के कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे प्यारे लिसनर के साथ मेरा ये 7 से 10 का टाइम इतने जल्दी बीत जाता है कि मुझे हर रोज लगता है कि मैंने आपसे बात ही नहीं करी, जबकि हम इतनी बातें करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि खुश रहिए, मुस्कुराइए एंड ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने घर पहुंच गए होंगे, बहुत सारे लोग पहुंच रहे होंगे एंड वन मोर थिंग कि अपने गाड़ी का जो स्पीड है वो नियंत्रण में रखें, क्योंकि अगर गाड़ी का स्पीड नियंत्रण में रहेगा तो गाड़ी एनी हाउ आपकी कंट्रोल हो सकती है, इसीलिए स्पीड पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। कल मिलूंगा आपको सेम टाइमिंग पर सेम शो पर, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोका।

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana, all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए और रोज आए.
3: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूंस एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: ईद यूंगे किंग खान जयो हनी सिंगर।

इस धमाल की दावेदारी के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM LG4 फॉर 90 AM एंड 99.9 FM LG3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक। ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450.04 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है। डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉर्थ Greensboro Speedway. Experience thrilling NASCAR action live. Feel the roar of engine and pure excitement of high-stakes racing. Point racing is back at North Greensboro. It's summertime time and spectacles at one of the NASCAR's most historic tracks. Don't miss epic tailgate and high-stakes racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन रही है मोनिका के साथ रेडियो नाइट पक्का देश।

0: Kerala 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9.
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डूंस एंड टॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइट, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3888.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SD4, 4090 AM एंड 99.9 FM SD3 for Telugu Naira Fame. मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक. हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल Out the Purple Carpet every other summer, transforming Winston-Salem into the mega performing arts center with more than 120 performances in number of the city venues. Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं. इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. पक्का देसी पक्का लोकल. My like it.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिस विले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में। गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि रच्चा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून। रच्चा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: गाना था यार, एक नंबर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 4090 AM, 99.9 FM LG3, तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूल्स एंड टॉक।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग डील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंग्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to your concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 14.

गाना आप ने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 4090 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंग एल्डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SG4, 49 AM, 99.9 FM, SG3 तेलुगु, नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। कहा था ना मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें, ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स।
1: बुलेवार ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gari, sundariye Monica ke saath Radio Naira, Pata Desi, Pata Local.

awesome girls from Gaane Ke Baad. One more time. Welcome, Hezzy, on 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 for 90 AM and 99.9 FM, SD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. वेल हमारे ट्राइंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है. हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी यूएस नेवी ब्लू एंजल्स जॉइन बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट. फन फेवरेट परफॉर्मेंसेज सच एज जेट ट्रक, पैराशूट, जंप टीम एंड एरोबैटिक पायलट एंड रैंडी बॉल, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Paka Desi, Paka Local.

0: Sanvi Meghana, all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नैरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: जब चाहे तब

दिल मेरा पत्थर का, ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नी नो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आम हासला A1 लाइफस्टाइल A1 ऐ मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल कटोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

रिकॉर्डिंग। सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता ऐका महाराष्ट्राचे ढोल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
3: डिड खोसला का घोसला रियली नीड अ सीक्वल? द कल्ट क्लासिक इज मेकिंग अ कमबैक। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And after 20 years, fans are getting the reunion they waited for. But without a fresh and engaging story, the sequel may struggle to recreate the magic. Only time will tell if Khosla Ka Ghosla adds to the legacy or remains audiences. Why some classics are best left untouched? Will the sequel live up to the legacy or disappointment long-time fans? Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: पद्मावत में हमने शाहिद कपूर और रणवीर कपूर की एक्टिंग साथ में देखी थी। एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग रणवीर कपूर, बट यार उसमें मैं शाहिद की भी तारीफ करना चाहूंगी। जिस तरीके से उन्होंने राजा का रोल निभाया था, इट वाज ग्रेसफुल। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यू नो शाहिद कपूर रिसेंटली लाइक अ रील फीचरिंग रणवीर सिंह ऑन इंस्टाग्राम एंड फैंस वर क्विक टू नोटिस द जेस्चर। द इंटरेक्शन हैज रीइग्नाइटेड कन्वर्सेशंस अराउंड देयर पद्मावत डेज व्हेन रिपोर्ट्स ऑफ एन अनलीक्ड रिफ्ट बिटवीन द टू एक्टर्स हैड मेड हेडलाइंस। व्हाइल नीदर शाहिद नॉर रणवीर हैज एवर कन्फर्म्ड एनी फ्यूड, शाहिद हैड अर्लियर एडमिटेड दैट ही फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर ऑन द सेट्स ऑफ पद्मावत, व्हाइल रणवीर लेटर सेड ही डिड हिज बेस्ट टू मेक हिज को-स्टार फील वेलकम। यार ऐसा ऑकवर्ड फील तो किसी को नहीं कराना चाहिए। आई डोंट लाइक इट, यू नो। Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.
2: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी पक्का लोकल। नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी पक्का लोकल।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आर योर पेशेंट्स फाइंडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन बिफोर दे वॉक थ्रू योर डोर्स और अराइविंग कंफ्यूज्ड एंड मिसइन्फॉर्म्ड? Join Sam IT Solutions for an exclusive healthcare seminar. The Digital Front Door, Patient Access and Misinformation. Discover how to improve the patient journey, eliminate access gaps, reduce misinformation and build a safer digital experience. Thursday, August 13th, 4 p.m. to 5:30 p.m. 2511 NC54, Suite 201, Research Triangle Park. Seats are limited. Register today. Brought to you by Sam IT Solutions, partnership with media partner Radio Naira and community organizations.

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Myra mein kho jao Pakka Desi.
1: हेलो हेलो हेलो राली दुरम, कैसे हैं? और दुनिया भर में जहां भी आप हमें सुन रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हेलो वैष्णवी शो में। और मैं हूं आपकी दोस्त वैष्णवी, और अगले दो घंटे हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद हम सबके दिल के किसी कोने में छुपा हुआ है। वेल, तो बता दूं आपको, आज का टॉपिक है, क्या कभी आपने सोलो ट्रिप पे जाने का सोचा है या कभी गए हैं? और अगर कल सुबह कोई आपसे कहे पैक योर बैग्स, टिकट्स रेडी है, तो आप किस जगह जाने चाहेंगे और क्यों? तो ये है आज का टॉपिक कि सोलो ट्रिप। ये इंस्पिरेशन मुझे मिली, मैं कल देख रही थी मुसाफिर कैफे, और वो है सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, तो बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला, ओके व्हाई डोंट वी डू अ शो ऑन क्या कभी आप सोलो ट्रिप पे गए। तो ये है आज का सवाल और ये है लाइव शो, तो ज़रूर ज़रूर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 919-999-8595 पर। और हाँ, ये भी बता दूँ कि आज के कॉलर्स में से लकी कॉलर को मिलेगा प्रभु देवा का शो जो होने वाला है अगस्त 9th को राली मेमोरियल में। तो फिर डेफिनेटली आप हमें कॉल करिए और हो सकता है कि आप ही हो वो लकी विनर। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर, एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी, और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड। वेल, आज हम बात कर रहे हैं अमेजिंग टॉपिक, आई थिंक सब लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में, ड्रीम में होता है कि हम कब करेंगे सोलो ट्रिप, या फिर आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है कि मेरा ये सोलो ट्रिप था और मैंने बहुत एंजॉय किया है, तो ऐसा कौन सा ट्रिप है आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 8919998595 पर। और आपको बता दूं कि आज का शो इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम देने वाले हैं द लेजेंड प्रभुदेवा के लाइव डांस कॉन्सर्ट, जो कि रैली में होने वाला है ऑन अगस्त 9th। के लकी विनर को मिलेंगे टिकट्स, सो हम दे रहे हैं प्रभुदेवा शो के टिकट्स, तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए वो टिकट तो हमें ज़रूर ज़रूर कॉल करिए 8919998595 पर, और आप हमें कॉल करके बताएंगे कि आपका अगर कभी आपका सोलो ट्रिप हुआ है, जाना सोचा है, या फिर गए हैं, या फिर कभी इट्स जस्ट अ ड्रीम एंड स्टिल यू आर वेटिंग कि वो कब आए, तो ज़रूर हमें कॉल करके बताइए। और लकी विनर को ही मिलेंगे प्रभुदेवा के शो के टिकट्स। और क्या बताएं, अब मैं मेरे सोलो ट्रिप के बारे में बताती हूँ। तो मैं गई थी, आई थिंक आई वॉन्ट से सोलो ट्रिप, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ भी गई हूँ वो अकेले ही गई हूँ। इट्स लाइक मतलब मेरी शुरुआत ही जैसे सोलो ट्रिप से हुई थी। तो मैं गई थी, आई थिंक इट्स सैन फ्रांसिस्को। वेल, मैं गई तो किसी मकसद के साथ थी, वहाँ पे मुझे किसी इवेंट पे जाना था, बट हाउएवर मेरा प्लान बन चुका था कि मुझे इवेंट के बाद करना क्या है। तो मैंने जैसे मैं मुझे जाना था तो मैंने प्लान बनाया कि चलो इवेंट तो 2 दिन का है और उसके बाद वहाँ से कहाँ जाऊँ, तो मैंने पूरा मैप उठाया और मैंने बस प्लान बनाया कि मुझे वेगस जाना है, मुझे ग्रैंड कैनियन देखना है, और ऐसी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसे लिस्ट में बनाई, और इतना मज़ा आया ना, यू वॉन्ट बिलीव, कि मैं वो अकेले ही गई। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अलग अलग था, मैं कभी ट्रेन में गई और कभी मैंने बस में गई, बहुत सारे लोग थे बस में, Everyone is stranger to me, ठीक है, मैं किसी को नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते हैं, बट ऐसा लग रहा था कि उनके साथ ट्रैवल करते करते लगा कि एज इफ आई नो देम और वो मुझे जानते हैं, तो कुछ ना कुछ बातें हो रही थी। तो मैं मिली एक दूसरे लैंग्वेज, आई थिंक इट्स स्पैनिश, तो उसको इंग्लिश नहीं आ रहा था और मैं वो समझ नहीं पा रही थी, तो ऐसा कुछ था। शी वॉज अ वेरी ओल्ड लेडी और वो बैठी थी मेरे साइड में, तो फिर हमारी बात कैसे हुई पता है, तो उन्होंने अपना ट्रांसलेटर मोबाइल में ऐप खोला और जो भी वो मुझे कहना चाह रही थी, सो शी स्टार्टेड टेलिंग इन स्पैनिश और वो मुझे दिखा रही थी कि दिस इज़ व्हाट आई मीन, एंड देन मैं भी इतना इन्वॉल्व हो गई कि मैंने बोला अच्छा तो चलिए मैं भी बात करती हूँ, और मैंने उनके ऐप में ही मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने कहा मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। तो ऐसे करते करते हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए, दैट वॉज अमेजिंग। जस्ट इमेजिन कि आपके जब भी मतलब या सोलो ट्रिप में जाते हो या कहीं जाते हो इनफैक्ट आप किसी ना किसी से मिलते हो और जस्ट बातें हो जाती हैं अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका भी है तो ज़रूर हमें कॉल करिए 8919998595 पर, और भी बहुत सारे सोलो ट्रिप के बारे में मैं आपको बताऊँगी, तो सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो नायरा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर, एंड दिस इज हेलो वैष्णवी लाइव शो। और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड। वेल, हम बहुत सारी बातें करते हैं, राइट? अब तक कितनी बातें कर चुके हैं, तो और उसी के साथ आज का टॉपिक हमने जो चुना है वो है आपका सोलो ट्रिप। अगर आपका कोई ड्रीम है ऑफ गोइंग टू सोलो ट्रिप, तो ज़रूर हमें बताइए वो क्या होगी। और अगर आप कभी, यू नो, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट सोलो ट्रिप, मैं अकेले गई हूँ या गया हूँ, ऐसा कुछ है और जिसमें कुछ मेमोरीज अभी तक आपको याद आती है, और यू नो, यू इट जस्ट ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस जब भी आप सोचते हो, ऐसा कुछ है, तो ज़रूर आप हमें कॉल करके बताइए। क्योंकि आज हम देने वाले हैं लकी विनर को द लेजेंड प्रभुदेवा के लाइव डांस कॉन्सर्ट की टिकट्स, तो वो आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री। वेल, इट्स फॉर द लकी विनर्स हु विल गिव अस अ कॉल ऑन 9199998595 पर। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सर्ट है ये, जो सबको नचा देगा। ऑफकोर्स प्रभु देवा अगर स्टेज पे है तो कौन नहीं नाचने वाला है ना? वैसे एक बात बताऊं कि हम इंडियंस ना जब सोलो ट्रिप बोलते हैं ना, जैसे ही सोलो सुनते ही मम्मी की तरफ से पहला सवाल होता है, अकेले क्यों, सब ठीक तो है मतलब, और पापा तो मतलब क्यों, फ्रेंड्स नहीं मिले क्या? सो उनके क्वेश्चंस भी इतने क्यूट होते हैं ना। लेकिन सच कहूँ, सोलो ट्रिप का मतलब ये लोनली होना नहीं होता, या फिर आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सोलो ट्रिप का मतलब होता है खुद से मिलना, यू नो, यू विल नो योर सेल्फ, इट्स योर मिरर। तो ऐसा मतलब मुझे नहीं पता लेकिन कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, बट डेफिनेटली जब भी आप अकेले रहते हो या फिर यू नो अकेले सफ़र करते हो, तो कितने सारे आपके खुद के थॉट्स अपने बारे में, यू नो, यू जस्ट सी अ मिरर कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या क्या कर रही हूँ मैं। एंड ऑफकोर्स अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी तभी मिलते हैं जब आप अकेले होते हो। हाँ या ना, ज़रूर बताना आप हमें कॉल करके 9199998595 पर। और इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी अनदर सोलो ट्रिप ऑफ माइंड, जहाँ मैं गई थी और वहाँ पे ऐसी मेमोरी जिसने डेफिनेटली मुझे हंसा दिया था, मतलब नॉट इवन स्माइल, एकदम मैं हंस पड़ी खुद पे कि ऐसा भी मैं कर सकती हूँ क्या, वो मैं आपको बताऊंगी आफ्टर टू सॉन्ग्स। वेल, दिस सॉन्ग इज कमिंग फॉर यू गाइज़।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम एंड 1490 AM पर, एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी, और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड। वेल दोस्तों, अब सोलो ट्रिप की बात और कुछ फनी, यू नो लाइक मैं आपको बता रही थी कि एक फनी थिंग हुई मेरे साथ सोलो ट्रिप में, तो वो मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैंने एक बार बहुत सारी यू नो मोटिवेशन वीडियोस देख ली, ट्रैवल सोलो, डिस्कवर योर सेल्फ, फाइंड इनर पीस, इस तरीके के पूरे मतलब एकदम एक के बाद एक वीडियोस देखती गई, और बस मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मैंने सोचा चलो इस वीकेंड में तो मुझे सोलो ट्रिप पे जाना ही है, एंड आई एम गोइंग। तो बस फ्राइडे रात को इतनी एक्साइट होके मैंने पूरी पैकिंग की। वेल, मुझे लेना था एक छोटा सा बैकपैक बिकॉज इट वॉज जस्ट फॉर अ वीकेंड, लेकिन यहाँ ये क्या बोलते हैं इंडियन जीन्स जो एक्टिवेट हो गया ना मेरे अंदर, एक जैकेट, दो जैकेट, एक एक्स्ट्रा शू, अम्ब्रेला अगर बारिश हो गई तो, पावर बैंक, क्या कुछ नहीं, यू नो फर्स्ट एड किट ऑफ कोर्स, एंड देन थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, चिप्स, बिस्किट्स, और क्या मतलब सब कुछ। ऐसा था कि मैं एक 10 दिन के लिए जा रही हूँ, हो गया अब बैकपैक इतना वेट, ठीक है कोई नहीं, रख दिया मैंने। ऐसा लग रहा था कि माउंट एवरेस्ट अब कॉन्कर करने जा रही हूँ, जैसे वो बड़ा सा बैग लेके जाते हैं ना वो लोग, उस तरीके की फीलिंग आ रही थी मुझे। तो मैं सैटरडे सुबह निकली, एंड हाँ ये स्टोरी मैं बता रही हूँ जो मैं इंडिया में थी, ठीक है, इंडिया की स्टोरी है। तो मैंने बस वो ट्रिप इतना स्पेशल था कि मैंने अपनी कार में फुल मतलब प्लेलिस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो फुल ऑन किया, बैग पीछे रखा, और एकदम मूड क्या बताऊँ मैं, एकदम वो हीरो वाली फीलिंग, यू नो कि अब बस जाना है मुझे। और मैंने गूगल मैप्स उठाया, मैंने कहा चल कहाँ लेके जा रहा है मुझे, चल तू बस, और मैंने लगाया गूगल मैप में जहाँ मुझे जाना था डेस्टिनेशन। वेल और गूगल मैप में ये हुआ कि उसने बोला फास्टर रूट अवेलेबल, ठीक है, और मैंने कहा चलो फास्टर रूट ही सही, चलो बोल के मैंने एक्सीलरेटर दबाया, और मैं 5 मिनट बाद क्या हुआ, यूँ जाते जाते जाते रोड थोड़ी सी ना ऐसे छोटी पतली होती गई, ठीक है, और मैंने कहा चल कोई नहीं गाड़ी तो जा रही है, इट्स फाइन, लेट मी गो। और फिर 10 मिनट बाद मैंने देखा रोड और थोड़ी पतली होती जा रही है, ठीक है, और मैं थोड़ा सोचने लगी कि ये पक्का मेरे ख्याल से आगे बढ़ी होगी, कोई नहीं चलते हैं, दिख रही है ना रोड तो दिख रही है, चलो चलते हैं। और फिर मैं गई, और फिर 15-20 मिनट हुए, और उसके बाद जस्ट इमेजिन क्या हुआ होगा, रोड गायब, यू नो सिर्फ एक कच्चा रास्ता था, और सामने एक वो क्या बोलते हैं जैसे वो फार्म होता है ना, खेती वगैरह होती रहती है वहाँ पे, वो एकदम वहाँ आके स्टॉप्ड, आई मीन अब मेरी गाड़ी जा ही नहीं सकती है एक वो कच्चे रोड पे, तो मैं रुक गई। और फिर मैंने ऐसा लग रहा था कि गूगल ने मुझे एक हॉरर मूवी का लोकेशन दे दिया हो। तो इतने में क्या हुआ, यू नो जब आप कोई मेन रोड से जब विलेज वाली जैसे विलेज के रास्तों पे चले जाते हो, तो वहाँ पे आपके बहुत ही क्यूट फ्रेंड्स बनते हैं, और बहुत ही या तो बकरी हो जाती है या फिर छोटे छोटे डॉग्स। तो मेरे सामने आई एक बकरी मेरी गाड़ी के सामने एकदम, ठीक है, और वो मतलब इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट जस्ट स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ माई कार, ना मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आगे भी नहीं, मैं हॉर्न कर रही हूँ नहीं जा रहा है। और वहाँ से वो जो साइड में जो आदमी जा रहा था वो बोल रहा था, उसने मुझे लिटरली क्या बोला पता है, कि मैडम ये ना ये गूगल मैप्स के भरोसे आप यहाँ पे आ गई है, अब तो आपका मतलब यहाँ से तो आप आगे जा ही नहीं सकती हो। इमेजिन मैन, मैं वहाँ पे क्या करूँ, अब मुझे इतनी हंसी आई कि अब मैं I started my conversation with that bakri. Can you imagine this? मैंने कहा कहाँ लेके आ गया, एंड देन अब करती क्या, मैंने फ़ोन उठाया और बस उसी के साथ एक सेल्फी उठाई, और मैंने कहा चलो, ऐसा लग रहा था कि लोकल टूर गाइड बन चुका था वो मेरा, मैं वापस कैसे जाऊँ यहाँ से। तो ये हुआ था मेरे साथ, एंड यू नो लाइक गूगल मैप समटाइम्स पता नहीं उसे हो क्या जाता है, ऐसी जगह लेके जाके रोक देता है, जा या तो रास्ता ख़त्म हो जाता है या फिर यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन, बस आगे जो है वहीं से जाना होता है, यू नो कच्ची रोड वगैरह वगैरह।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है तो ज़रूर हमें कॉल करके बताइए एट 919-999-8595 पर। और आपको बता दूं कि हम देने देवा के लाइव डांस कॉन्सर्ट जो कि होने वाला है राली मेमोरियल में अगस्त 9th को है ऑन संडे, डेफिनेटली परफेक्ट डे रहेंगे उनके सोलो ट्रिप, या चलो भाई आप ट्रिप ही बोल देते हैं ना, अब सोलो ट्रिप क्या, अगर किसी ट्रिप पे गए हो और कोई अमेजिंग सी चीज़ हुई है और वो आपको हमेशा हंसाती रहती है तो बस फ़ोन उठाइए और कॉल करिए हमें। और मिलते हैं अब हम एक दो गाने के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM एंड 1490 AM पर, एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी, और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड। और हम बात करते करते हो चुका है 5:47 PM। ओ माई गॉड, 45 मिनट से हम लोग क्या बात कर रहे हैं। वेल, हम बात कर रहे हैं सोलो ट्रिप के बारे में, और अगर आपका कोई सोलो ट्रिप बहुत ही यादगार है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वो एट 919-999-8595 पर। और अगर आप कभी गए हैं या फिर जाना चाहते हैं, या फिर इट्स जस्ट अ ड्रीम, यू नो, आपने कभी मतलब कभी कभी क्या होता है ना, एक मूवी देखते हुए सोच रहे थे अरे हम भी ऐसे जाते थे, हम भी ऐसे जा सकते थे, यू नो, मुझे भी ऐसे जाना है। हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मुझे वर्ल्ड टूर

जाना है या फिर अकेले जाना है कहीं, आई जस्ट नीड माई टाइम, ऐसा वाला कुछ, वो सिर्फ ड्रीम ही रह जाता है. वो सच भी हो सकता है, डेफिनेटली. बस आपको मानना है कि यस आई एम गोइंग, या फिर मुझे जाना है, बस ठान लिया है ना. और ये पता है, ये एटीट्यूड ना मैंने मैंने देखा है जब मैं कॉलेज में थी ना, दिस वॉज द एटीट्यूड, बस जाना है तो जाना है. वो कॉलेज की क्या वाइब होती है ना, कि आप कुछ सोच लो तो बस आप वही करोगे, यू यू वोंट केयर अबाउट, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आती ही नहीं है इनफैक्ट, है ना. कोई नहीं रोकता आपको, यू आर जस्ट कि मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे ये करना है, वो करना है, आई वॉन्ट टू डू माई स्टार्टअप या कुछ भी, मतलब हर चीज़ के लिए हम रेडी होते हैं. और पता नहीं वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना बाद में हम सोचने लगते हैं, ऐसा करूँ, इज़ इट ओके इफ़ आई डू, इस सब लाइफ निकल जाती है दोस्त, है ना. तो ऐसा मत करिए, लिव इन द मोमेंट और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को. तो इसी तरीके से एक और सोलो ट्रिप के बारे में आपको बताती हूँ कि मेरे साथ और क्या हुआ था. एक बार यूँ ही ऐसे कॉफ़ी शॉप में, मतलब वो एक वो भी रोड ट्रिप थी मेरी, और ऐसे हम लोग बीच बीच में हम लोग रुक के, इट्स रोड ट्रिप ऑलवेज, इट्स लाइक वी कान जस्ट ड्राइव ऑल द टाइम, राइट, यू नीड अ ब्रेक. तो उस ब्रेक के टाइम में एक अमेजिंग कॉफ़ी शॉप थी, उस कॉफ़ी शॉप का नाम भी मुझे याद है, इट वॉज लाइक कॉफ़ी शॉप, मतलब एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी, ओके. तो उस हम लोग गए वहाँ, मतलब मैं गई वहाँ पे, और एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि मैं बैठी थी वहाँ पे, बैठ के मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया. दे हैव अमेजिंग कॉफ़ी, अलग अलग तरीक़ों की. तो मैंने सोचा चलो कुछ नया ही ट्राई करते हैं. तो आई जस्ट ऑर्डर समथिंग एंड देन वो कॉफ़ी आई, और मैं आराम से बैठ के, इट वॉज़ लाइक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ड्राइव, तो मैं बहुत देर तक बैठी थी वहाँ पे. एंड देन सडनली वो इतनी इट वॉज सो फुल, मतलब बहुत पैक थी वो, बहुत सारे लोग थे, उसमें बैठने की भी जगह नहीं थी. उस तरीके का कॉफ़ी शॉप बन गया था वो मेरे जाने के अंदर. तो मैं बाहर बैठी हुई थी, मतलब एक बाहर एक छोटी सी टेबल और वो थी, तो मैं उस पर बैठी थी. इट वॉज सो अमेजिंग, इतनी शांति बाहर थी वहाँ पे. एंड देन मेरे सामने एक लड़का आया, और वो बोला कि कैन आई माइंड इफ आई सिट हियर. मैंने कहा बैठ जाओ भाई, तब जहाँ पे मैं बैठी हूँ अब चल तू भी बैठ जा, अब क्या ही होना है. तो बैठ के उसने भी कॉफ़ी ऑर्डर की, और ऐसे हाँ हम दोनों बैठे थे. तो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग कि, और वो भी ना एकदम यूजुअल टॉक, मतलब यूं ही बस बातें. एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग टॉकिंग एंड देन इट्स लाइक दो घंटे बातें ही होती रही, कैन यू इमेजिन. एंड आई थिंक ही, वो मुझसे छोटा था, और लेकिन वो छोटा होने के बावजूद भी ना उसकी बातें इतनी अमेजिंग थी, सो मैच्योर्ड, एंड ऐसा लग रहा था उसने दुनिया उस एज में ही पूरी दुनिया देख ली हो, उस तरीके की बातें कर रहा था. बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था उसे देख के, आई वाज इंस्पायर्ड बाय हिज टॉक. एंड देन जाना था, तो जाते वक्त उसने सिर्फ मुझसे एक लाइन बोली थी, मुझे आज भी याद है वो. उसने कहा कि क्या कहा था उसने, उसने कहा कि travel teaches you that strangers are just friends you haven't met yet. मैंने कहा वाह भाई, मतलब कुछ किस तरीके की, मतलब मुझे वो लाइन ना इतनी अच्छी लगी, मैंने उसी टाइम पे उसे नोट कर लिया था, पता है, इतनी ब्यूटीफुल लाइन. आई टेल यू अगैन, लाइक travel teaches you that strangers are just friends you haven't met yet. ऐसे बोल के वो चला गया, ठीक है. एंड मैं बस सोचती रही कि भाई कमाल है ये तो, मतलब कमाल का लड़का है, कितनी अच्छी बातें की इसने मेरे साथ. और तब मुझे लगा कि कभी कभी ना सफ़र जो है वो जगह नहीं बदलता, मतलब ऐसा लगता है कि वो इंसान को ही बदल देता है. तो उस मोमेंट के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो सो इंस्पायर्ड उसकी बातों से, उसके जो जो ड्रीम्स थे, वो क्या करना चाहता है, व्हाई ही वाज देयर, उसने जिस तरीके से मुझे बताया, ऐसा लग रहा था कि एकदम प्लेन पेज पे उसने अपने प्लान को लिखा हुआ था मेरे सामने. दैट्स हाउ आई मीन, स्ट्रेंजर से वो बस बता रहा है अपने बारे में, एंड इट वाज सो अमेजिंग मैन, बहुत अच्छा लगा था.
अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भी यू नो एक्सपीरियंस है और आपको भी बहुत कमाल का लगा हो, मतलब इट इंस्पायरिंग हो सकता है, या फिर एक स्माइल ला दी हो आपके चेहरे पे, या फिर ऐसा हुआ कि उस ट्रिप पे जो जिससे आप स्ट्रेंजर से बात हुई और वो अब दोस्त बन चुके हैं और आज भी आप उनसे बात करते हो, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 8919998595 पर। और हाँ, आज के लकी विनर को मिलेगा प्रभु देवा जी का लाइव डांस कॉन्सर्ट जो कि राले में होने वाला है, उसका फ्री टिकट। सो वेल, अगर आपको देखना है डांस कॉन्सर्ट तो हमें कॉल करिए 8919998595 पर। और हाँ दोस्तों, अब द टाइम इज 5:53। वेल, आफ्टर फ्यू सॉन्ग्स विल बी बैक अगैन, और भी बहुत सारे स्टोरीज मैं आपको बताऊंगी, और अगर आपके पास है तो आप हमारे साथ शेयर करिए।

0: Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नारायण, दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती है अनलिमिटेड। और उन्हीं बातों में आज हम बात कर रहे हैं सोलो ट्रिप के एक्सपीरियंस की, या रोड ट्रिप के एक्सपीरियंस कहूं। वेल, अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्टोरी है आपकी या किसी और की, आप जिस जो जानते हैं, अगर उनका सोलो ट्रिप का कोई भी मेमोरी, यू नो एनी मेमोरीज विच यू थिंक कि ये अमेजिंग यू नो याद थी कि उस सोलो ट्रिप में मैंने ये किया था और नए दोस्त बने आपके, या फिर आपका ड्रीम है कि हाँ जाना, यू नो यू हैव जस्ट पार्क्ड इट समवेयर कि ये है लिस्ट में बट पता नहीं कब जाएंगे, राइट। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं एट 919-999-8595 पर। और आज के लकी विनर को मिलेगा प्रभुदेवा का लाइव डांस कॉन्सर्ट, जो कि होने वाला है राली मेमोरियल में, और वो भी है ऑन अगस्त 9th, इट्स मीन्स संडे। सो डोंट मिस, आप ज़रूर हमें कॉल करिए और हो सकता है कि आप ही हो वो लकी विनर। तो कॉल करने के लिए आपको मोबाइल उठाना है और नंबर डायल करना है 919-999-8595 पर। तो चलिए आगे एक और स्टोरी बताती हूँ आपको मैं, यू नो ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिप विच आई वेंट, आई थिंक एक दो तीन साल पहले। हाँ, तो वो अगेन, हाँ मैं आपको, यू नो मेरी स्टोरीज ना, काफ़ी सारी स्टोरीज सैन फ्रांसिस्को से जुड़ी है, क्योंकि मैं वहाँ इतनी बार अकेले जा चुकी हूँ। और जब भी गई हूँ मैं वो गोल्डन गेट, इट्स समथिंग, उसमें कुछ जादू है ऐसा बोलूँगी मैं, यू नो मैजिकल। वहाँ की हवा, जैसे ही आप वो ब्रिज के पास जाते हो, जस्ट लुक एट द ब्रिज, नॉट ब्रिज के ऊपर जाके नहीं नीचे से उसे देखो और सिर्फ वहाँ पर बैठो आराम से, एंड देन जो हवा आती है ना वहाँ पे, और इतनी साइलेंस, ओ माई गॉड, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं पहली बार गई थी, पहली बार देखा था मैंने, और वहाँ पे सो अमेजिंग मैन, वो हवा और वो शांति, और जिस तरीके के थॉट्स मेरे दिल में थे, इतना शांत, मैं बस मुस्कुरा रही थी समझो। वेल चलिए, हमारे पास है कॉलर, सो लेट्स सी हु इज इट। हेलो
3: हेलो
2: हेलो, कौन बात कर रहा है?
3: मैं शेखर बात कर रहा हूँ, कैरी से।
2: शेखर, हे शेखर, हाउ आर यू डूइंग?
3: बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं बिल्कुल बढ़िया, हमेशा की तरह। बिल बताइए, आप आपने कहा कैरी से बात कर रहे हैं, तो बताइए, आप हमारा शो सुन रहे होंगे, तो लेट्स गेट ऑन टू योर ट्रिप्स।
3: मैं हमेशा आपका शो सुनता हूँ, जब भी गाड़ी से जाता हूँ ऑफिस से, अभी इसी टाइम पे मैं निकलता हूँ, तो हमेशा आपकी शो सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है सुन के।
2: थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, यू नो इसी तरीके से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है जब ऐसे ऐसे कमेंट्स हमें मिलते हैं कि हमारे शो सुना जा रहा है और आप यू नो वन ऑफ द लिसनर, सो इट्स सो गुड, थैंक यू सो मच।
3: जी, हमारे सोलो ट्रिप जब होता था तो हम लोग इतने फोटोज नहीं लेते थे, इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं डालते थे, तो हमारा ट्रिप तो ऐसे रहता है कि आज तो हम लोगों को ऑफिस से, इस डेली जिंदगी से छुटकारा चाहिए, ऐसा ही चाहिए हमको। हम लोग निकल पड़ते थे, कहीं भी निकलना है तो कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चार दोस्त मिल जाते हैं, गाड़ी ले लेते हैं रेंट करके और निकल पड़ते हैं। तो आपको एक चीज बताऊं, तो हमारा ऐसा था कि बहुत सबसे बहुत काम था ऑफिस से, और इतना इतना टेंशन हो गया था कि क्या करना है क्या करना है बोल के, सोच के हम लोग ऐसे ही फ्राइडे रात को निकल गए, और मतलब रात को कहाँ जाना है, किधर जाना है, ना कहीं पे ही जाना है, तो हम लोग गए थे यहाँ से ड्राइव करके अटलांटिक सिटी, और अटलांटिक सिटी हम लोग रात को जब निकले और हमको पता नहीं किधर जाना है, तब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ऐसे गूगल मैप्स और कुछ था नहीं, तो हम लोग तो ऐसे निकल के जाते थे और वहाँ पे मतलब सब जो मैप पेज थे हम लोग वो प्रिंट आउट निकालते थे और एक बंदा रहता था साइड पे, वो नेविगेट करता था कि इधर घूमो उधर घूमो, ये एग्जिट लो वो एग्जिट लो, ऐसे करके हम लोग जाते थे। और रात को जब पहुंचे अटलांटिक सिटी तो वहां पे ना होटल का रिजर्वेशन ना कुछ नहीं, वहीं पे रात भर वहीं पे बोर्ड रोड पे हम लोग पूरा रात गुजारे और इधर कैसीनो में जाते थे, उधर जाते थे, मतलब ऐसा ही करके नो होटल नथिंग वहां पे रात गुजारे। सुबह हुआ वहां पे पब्लिक वो रेस्टरूम में जाके नहाए जो भी करे, उसके बाद फिर
2: वेरी नाइस। आई मीन आई कैन इमेजिन जब गूगल मैप्स नहीं थे तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल के वो जो एडवेंचर में जैसे होता है ना मैप उठाया ट्रेजर हंट जैसा
3: मतलब ऐसा था कि तभी मतलब हम लोग ड्राइव करते थे और ऐसा नहीं कि राइट में एग्जिट हमेशा राइट में रहता है, नहीं नहीं ये एग्जिट लेफ्ट में, तो हम लोग पूरा एकदम फास्ट हुई लेफ्ट जाके और एग्जिट लेना, मतलब मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे हम लोग ड्राइव करते थे। तो
2: बिल्कुल बिल्कुल सो फनी, बहुत ही अच्छा। वेल सही पे आई एम जस्ट इमेजिनिंग के कैसे हुआ होगा विदाउट मैप्स, मैप रख के भी सीधे सीधे नहीं पहुंचते हम लोग, एक एग्जिट लेना होता है दूसरा एग्जिट उठा लेते हैं
3: उसमें हम लोगों ने एग्जिट लिया और एग्जिट लेके ऐसे ही है कि कंट्री रोड पे चल रहे थे और मैं ड्राइव कर रहा था और मुझे पता नहीं था वो हम लोग ठीक साइड पे ड्राइव करे या नहीं कर रहे, और मैं जा रहा हूँ ऐसे वो रॉन्ग साइड टू सिंगल लेन रोड था और रॉन्ग साइड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उधर सामने से गाड़ी आ रही, उसने मुझे देखा कि मैं रॉन्ग साइड पर, जोर ब्रेक मारा था एकदम हॉर्न ला गया, मैं पूरा एकदम क्या हो गया मैं गलत साइड में ड्राइव कर रहा हूँ क्या, फिर टर्न होके गया वो बंदा इतना गाली कर रहा था
2: पता। ओह माय गॉड, ये मेरे साथ भी हुआ है। हम लोग गए थे एक टेंपल को और वापस आते समय मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने लिटरली उसे जैसे यहाँ पे हमें राइट साइड से लेना होता मैंने घुमा दिया उल्टा, यानी कि जहाँ से ऑपोजिट से आती है गाड़ी, जैसे हम लोग इंडिया में ड्राइव करते। ओह माय गॉड, लाइक मेरे गाड़ी में और तीन बंदे थे और वो लोग बोल रहे क्या कर रही हो वैष्णवी, एंड आई वाज लाइक तब मैंने रियलाइज किया कि ओह माय गॉड मैं गलत, यू नो लकीली ऑपोजिट में कोई गाड़ी नहीं थी, मैप रख के मैंने वो गलती की। सो आई कैन इमेजिन कि आपका तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचर हुआ होगा
3: सोलो ट्रिप की बात ही कुछ अलग रहती है, ऐसी अनप्लान्ड सोलो ट्रिप करना मतलब सही रहता है सही।
2: या आई थिंक मैं कहूंगी कि सोलो ट्रिप के साथ साथ ना ये फ्रेंड्स के साथ जो रोड ट्रिप में जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है
3: मतलब कोई प्लान नहीं कुछ नहीं, बस निकल जाओ कहीं भी रुकना है रुक जाओ, कोई फर्क नहीं
2: एग्जैक्टली और सब लोग बात करते रहते हैं यहाँ लो वहां लो लेफ्ट राइट, यानी दो लोग अगर चार लोग हैं तो दो लोग बोलेंगे लेफ्ट लो और एक बोलेगा राइट लो और एक बोलेगा स्ट्रेट चलो, यू होता है बोलते ही रहते हैं सब लोग, आई कैन इमेजिन दैट। वेल वेल बहुत मजा आया शेखर जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड टुडे वी आर गिविंग प्रभुदेवास लाइव डांस कॉन्सर्ट के टिकट्स टू लकी विनर, सो डेफिनेटली आप एंड तक शो सुनते रहिए, हो सकता है आप हो वो लकी विनर। वेल विल सी दैट इन द एंड ऑफ द शो, थैंक यू सो मच,
3: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू
2: टेक केयर, ऐसे ही हंसते रहिए आप।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर, एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी, और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड। और आज के टॉपिक पे, वेल अगेन मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं सोलो ट्रिप की। चलिए अब सोलो ट्रिप क्या कहूँ, मेरे को तो ऐसा लगा लास्ट कॉल के बाद, शेखर जिससे बात करने के बाद लगा कि अब मैं बोल ही दूं कि चलो फ्रेंड्स ट्रिप। इतना मजा आया ना, ऑफकोर्स यार, मतलब सोच सोच के मैं हंस रही हूँ कि सोचो GPS नहीं था और उन्होंने मैप को प्रिंट किया और मैप देखते चल पड़े दोस्त। वाह क्या बात है। वेल मानना पड़ेगा कि वो जमाने में, मतलब यू नो, जब मैप्स नहीं हुआ करती थी, थैंक्स टू गूगल वाओ एंड ऑफकोर्स एप्पल कि मैप्स हैं, और मैप होने के बावजूद भी हम गलतियाँ करते हैं लेफ्ट और राइट लेने में। और मैं ऑफकोर्स एग्री करूँगी कि ये सारी लड़कियों की प्रॉब्लम है। मेरी तो प्रॉब्लम है लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट मानना। अगर मैं खुद से चला रही हूँ ना, देन आई विल ड्राइव सो गुड। लेकिन अगर मेरे साथ कोई है और उन्होंने कहा लेफ्ट, तो पता नहीं दिमाग काम ही नहीं करता और मैं ले लेती हूँ राइट। पता नहीं यार, ऑटोमेटिकली ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब आप स्टीयरिंग को ऐसे कैसे घुमा सकते हो राइट। बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। ड्राइव करते समय बी केयरफुल। वेल मैं बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ, आई लव ड्राइविंग, वो भी एक चीज़ है। तभी तो मैं कह रही थी कि रोड ट्रिप्स के बारे में, बिकॉज आई जस्ट लव ड्राइविंग। बस गाड़ी निकाली और चल दिए, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी टाइम मैंने किया है। वैसे वो ट्रिप्स में जो मैं बस गई, गाड़ी निकाली और चल पड़े हम, बस सोचते सोचते उन थॉट्स में पता नहीं हम कहाँ चले गए, ऐसा भी हुआ है काफ़ी टाइम। बट बहुत अच्छा लगता है when you drive and when you are alone and you are just driving and बस थोड़ी देर के बाद, you know, when you come back, so your mind is like एकदम refresh हो जाता है। वो उस तरीके का भी ट्रिप होता है, that also comes under solo trip। Well अगर आपके पास भी ऐसी कोई experience है, या फिर you know कोई बहुत ही मज़ेदार कहूँगी मैं, ऐसा कोई experience है जो you know you want to share आपके friends के साथ आप गए, और आजकल तो मैंने काफ़ी देखा है girls trip, wow। इमेजिन यार, जब दो गर्ल्स बैठ के बात करती है तो फिर इतनी बातें करती है कि टाइम का पता नहीं चलता। और जस्ट इमेजिन अगर बहुत सारे गर्ल्स मिलके कहीं जा रहे हैं, तो मतलब वो जहाँ गए उस जगह से ज़्यादा वो खुद में बात करते हैं। ये भी हुआ है, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वेल अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 8919998595 पर। और आपको बता दूं कि आज हम दे रहे हैं फ्री टिकट ऑफ प्रभुदेवा लाइव डांस कॉन्सर्ट। लकी विनर को मिलेगा ये फ्री टिकट टू वॉच प्रभुदेवा लाइव ऑन स्टेज। वाह, और हाँ वो सबको नचा देंगे फॉर श्योर। सो ये बहुत ही सुपर हिट शो होने वाला है August 9th को, विच इज़ ऑन संडे, परफेक्ट डे आया हुआ है, तो डोंट मिस, और मिस नहीं करना है। और टिकट भी चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कॉल करिए 8919998595 पर। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अनदर स्टोरी, विच इज़ वो मेरी नहीं है, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड उनकी स्टोरी है, तो वो मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। आप तब तक के लिए ये गाना एंजॉय करिए। वील बी बैक सून अगेन।

0: पटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker।
1: हार्ट बीट

0: Welcome back. Well, you are listening to Radio Naira, 99.9 FM HD4, 101.9 FM and 1490 AM. And this is live show Hello Vaishnavi, and you are talking to a host, Vaishnavi. You are listening to Vaishnavi. Well, we have another caller. Let's take a call. Hello.
1: Hello, Vaishnavi.
0: Hi. Who is this talking?
1: जी वैष्णवी, मैं संग्राम बात कर रहा हूँ.
0: हाय संग्राम जी, हाउ आर यू?
1: मैं बढ़िया, आप कैसे हो? और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा लकी डे है. मैं कल अर्पित से भी बात किया और इस टाइम पे मैंने आपसे बात किया. सो इट्स नाउ डेज प्रिविलेज टू स्पीक टू लाइव आरजे.
0: क्या बात है.
1: आप कैसे हैं?
0: इट मींस अ लॉट. थैंक यू सो सो मच. वेल, कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं यही एपिक्स से बात कर रहा हूँ. आई वॉज वेटिंग टू पिक माई किड फ्रॉम हर सिंगिंग क्लास. बट मैं जैसे अर्पित से कल भी बात किया कि आज के जमाने में जो स्पॉटिफाई और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, रेडियो का मजा लोगों को लेना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी डॉटर अनुष्का को भी कि ऑलवेज गाने सुनिए रेडियो पे. और आपको जिंदगी का मजा आएगा. मतलब लाइफ इज नॉट प्रेडिक्टेबल, टेक इट एज इट गोज. एंड रेडियो आप जब सुनते हो तो आपको वो गाने आपके मेमोरी लेन में लेके जाते हैं, आपको आपके बचपन की यादें दिलाते हैं. और आज जैसे आप बोल रही है दोस्तों के बारे में, तो मेरी काफी अच्छी मेमोरीज है उसके बारे में, दोस्तों के बारे में, स्पेशली मेरे कॉलेज के टाइम पे.
0: जरूर सुनना चाहेंगे, बताइए.
1: अब क्या ही बोलूं, अभी देखो कॉलेज सबसे क्लोज है. कॉलेज के टाइम पे मैं इंडिया से महाराष्ट्र पुणे में, हमारा COE मालेगांव करके कॉलेज था, तो वहाँ पे हम लोग सब मिले थे इंजीनियरिंग के टाइम पे. और जैसे आपने बोला कि कभी कभार हम अजनबियों से भी बात करते और हमारी गहरी दोस्ती बनती है, तो वैसे ही हमको फर्स्ट ईयर में सब लोग कॉमन थे, हमारी दोस्ती बन गई. कोई हमारे ब्रांच में भी नहीं था, बट अगेन डाउन द लाइन वी बिकम प्रीटी गुड फ्रेंड्स. एंड वो बोलते हैं ना, 3D दोस्ती बन गई हमारी, बहुत गहरी दोस्ती है, दिल चाहता है जैसी. सो अगेन इट्स अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस आई कैन से. वैष्णवी, आप कुछ बोलना चाहते हैं आपके फ्रेंडशिप के बारे में?
0: वेल, मैं भी यही कहूंगी कि डेफिनेटली यू नो, जब हम कॉलेज में होते हैं ऐसा कभी का बहुत बार होता है कि कॉलेज में ना जो जिससे हम बात नहीं करते वो बाद में इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि दूसरे लोग देख के बोलते हैं तुम दोनों दोस्त कैसे बने. यू नो, ये सवाल होता है.
1: बिल्कुल
0: राइट,
1: बिल्कुल. और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरा जो जूनियर है मेरे ब्रांच में भी नहीं था, वही मेरा पड़ोसी, और उसकी वजह से मैंने यहाँ पे घर लिया. तो यू कैन नॉट इमेजिन. तो मैं कैलिफोर्निया में था, उसको मिलने में राले आया और मैंने उसके बाजू में मेरा घर भी लिया. तो देखो, मेरा जूनियर था और मेरी दोस्ती सबसे अच्छे उससे थी. तो बिल्कुल सही बोला है,
0: ये बिल्कुल अलग हो गया. मतलब मैं तो सिर्फ क्लास की बात कर रही थी, आपने कहा जूनियर था, तो नॉट इवन इन योर क्लास.
1: एग्जैक्टली, अभी वेवलेंथ मैच हो गई. तो फिर और फिर बाद में एज डजंट मैटर, राइट? कौन कौन से ब्रांच का है, कितने साल बड़ा, कितने छोटा, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती.
0: बिल्कुल मैजिकल, डेफिनेटली. यू नो, मेरे मास्टर्स में, मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो वहाँ पे क्या हुआ था, मेरी दोस्ती ना मेरे सुपर सीनियर यानी जो सीनियर्स थे उनसे और मेरे जूनियर्स उनसे होती थी ज़्यादा दोस्ती. दे यूज़ टू नो मी वेरी वेल. यू नो, जो जैसे सोशल मीडिया पे होते थे, कनेक्ट होते थे, वो लोग बात करते थे और यू नो, जो भी गाइडलाइंस या बुक्स चाहिए होती थी, तो उस तरीके से मतलब मुझे ज़्यादा जानते थे जूनियर्स एंड सीनियर्स. तो मेरे क्लास में जो मेरे फ्रेंड्स होते बोलते थे ये कैसे पता है, वो कैसे पता है. तो मतलब वो लोग खुद हैरान हो जाते थे कि हाउ कम, यू नो, लाइक कैसे क्लोज हो रहे हो आप, कैसे दोस्ती, कैसे मतलब कहाँ से कनेक्ट हो रहे हो, कैसे हो रहा है ये सब. तो वो यू नो, किसी से मिलना इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल. और जब मिलते हैं और कुछ ना कुछ रीजन होता है कि आप उनके दोस्त बन जाते हो, यू नो.
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे आपने बोला कि हम जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि हमारे क्लासमेट से हम कनेक्ट नहीं कर पाते, डेफिनेटली कर पाते, लेकिन जो 50% जो होते हैं कि वो जस्ट naturally उनके साथ हमारा बॉन्ड बन जाता है, और you know it goes on forever. So
0: definitely, I think you know I feel like
1: destiny,
0: yeah, I feel like friends जो होते हैं ना, I think they वो कैसे होते हैं, उनसे कुछ भी share कर सकते हो आप. So very important to have friends in your life. और मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे friends होते हैं उनके. So I always tell them कि you are blessed. Because you have friends, you have people around you to share, to talk, to go.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो वो क्योंकि आप देखिए हम यहाँ होते
1: नहीं नहीं बिल्कुल स्पेशली आई कैन रेजोनेट विथ यू जब हम अपने कंट्री से बाहर रहते हैं ऑफ कोर्स ये भी यू नो इट्स माय सेकंड होम बट जो हमें इंडिया में हम जाके किसी से भी बात कर सकते इजीली ऐसे मन में कुछ भी रहता नहीं तो यहाँ के अच्छे दोस्तों को होना बहुत जरूरी है एंड पार्डन मी मैं लाइव रेडियो पे बोल रहा हूँ लेकिन कमी नहीं दोस्तों का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है आपको वो हेल्प करते हैं दे पुल योर लेग्स एंड दे जस्ट मेक यू you know went out when needed so it's a balance sabhi tarike dost hone chahiye mere
0: hisab se bilkul aapne kaha kamine dost main mere liye mere hisab se aisa hota hai mujhe aalsi dost chahiye unke paas itne right answers hote hain na short ekdam shortcut mein answers denge wo log solve kar dete hain problems ko तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि आलसी दोस्त चाहिए मुझे क्योंकि उनके पास हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना बहुत ही मतलब इजी होता है शॉर्टेस्ट एंड बहुत मतलब आलसी है ना वो लोग तो बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं तो मुझे ऐसे दोस्त भी काफी अच्छे लगते हैं
1: 100% ऐसे प्रोजेक्ट में तो ऐसा दोस्त ऐसा चाहिए कोई ना कोई बंदा जो आपको क्विक इजी बता देगा राइट ऑलवेज नहीं लेकिन कभी और उनका दिमाग ऐसे घोड़े के जैसा दौड़ता है और ऐसे शॉर्टकट आइडिया लगाते हैं आप पूछो ही मत ये आप बोलते हो कि यार कैसे निकाल सकते हैं
0: बट
1: वो बात वही जानते हैं जो आलसी है वही सब करते हैं
0: एग्जैक्टली दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रू बट मुझे लगता है मैं जिनसे भी मिली हूँ जो लेजी फ्रेंड्स है मेरे बहुत ही क्रिएटिव लगते हैं मुझे
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक दे आर रियली एंड दे आर गिफ्टेड राइट इट्स दे जस्ट नो व्हाट नीड्स टू बी डन एट द लास्ट मोमेंट एंड दे वर्क आउट राइट मुझे लगता है कि आप भी फंसेगा बेटा तू और पता चलता है कि वो बच के निकल गया मैं बोलता मैं नहीं कर सकता भाई बढ़िया दे आर गिफ्टेड
0: एब्सोल्युटली वेल वेल संग्राम जी बहुत अच्छा लगा आई होप आप ऐसे ही सुनते रहे रेडियो नायरा को और हम लोग आज वी आर टुडे ऑल्सो वी आर गिविंग प्रभुदेवा लाइव डांस कॉन्सर्ट जो होने वाला है राले में ऑन अगस्त 9 तो उसके टिकट्स हम दे रहे हैं और लकी अगर आप लकी विनर हुए तो डेफिनेटली आपको वो टिकट मिलेगा
1: बिल्कुल बिल्कुल यस लेट्स होप फॉर द बेस्ट और सेम ईयर इट्स ऑलवेज प्लेजर वैष्णवी टू स्पीक टू अ लाइव आरजे और आप प्लीज बने रहिए कभी कभार कॉल इन कम भी हो सकता है बट मेरे जैसे लोग रहेंगे और विल गेट आवर नंबर्स एट टू सर्टेन पॉइंट जैसे आपको फिर बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा लोग कॉल ही कॉल करेंगे सो एंजॉय योर डे वैष्णवी एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू
0: थैंक यू सो मच टेक केयर थैंक यू सो मच बाय बाय
1: टेक केयर बाय बाय
0: तो ये थे संग्राम जी हमारे साथ वेल उन्होंने कितनी अच्छी बात कही ना ऐसे देखो बात करते करते भी ना इट्स लाइक यू गेट लॉट ऑफ थॉट एक्सचेंज कि मैंने कहा कि लेजी पीपल आर मोस्ट क्रिएटिव पीपल एंड उन्होंने कहा कि यू नो कि दोस्त जो होते हैं वो ऐसे मतलब कमी नहीं दोस्त आई एम सॉरी बट ऐसे दोस्त भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं वेल फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इट्स लाइक ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ जो होने ही चाहिए और अगर नहीं है तो बस बनाते रहिए फ्रेंड्स बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं ऑफ कोर्स यू शुड हैव योर ओन कि वो वेवलेंथ जैसे कहा कि वेवलेंथ मैच होनी चाहिए एंड यू नो आप बस फ्रेंड्स है यार उनसे कोई वो मतलब क्या बोलते हैं मतलब ही या फिर यू डोंट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ इट जस्ट फ्रेंड्स वो आपको सुन रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है वो आपकी बातें सुन रहे हैं आपके साथ हैं एंड यू नो दे आर विथ यू एवरीवेयर गलत में सही में और रोड ट्रिप पे या फिर यू नो कहीं टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन US मतलब यहाँ पे तो फ्रेंड्स ही सब कुछ है सब मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगी लेकिन घर से जब दूर होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दोस्त होना ज़रूरी है तो वो यहाँ आके ही मुझे पता चला सो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग वेल वी विल कीप टॉकिंग अबाउट द रोड ट्रिप एंड सोलो ट्रिप और तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए और हाँ आज हम दे रहे हैं प्रभुदेवा के लाइव डांस कॉन्सर्ट के टिकट्स जो भी लकी लिसनर्स होंगे लकी विनर जो भी हमें कॉल करेंगे हो सकता है आप में से कोई भी वो टिकट जीत सकते हैं तो फिर हमें कॉल करिए एट 919-999-8595 पर

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम एंड 1490 एएम पर. एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी विथ योर होस्ट वैष्णवी, जहां बातें होती हैं अनलिमिटेड. और उन अनलिमिटेड बातों में से आज हम बात कर रहे हैं सोलो ट्रिप की या फ्रेंड्स ट्रिप की. वेल, एनी रोड ट्रिप की भी हो सकती है. ऐसी कोई भी ट्रिप जो आपको बहुत ही यादगार है और बहुत बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और आज भी आप जब उसको याद करते हैं तो आपके चेहरे पर आती है मुस्कुराहट. वेल, दैट्स सो मैजिकल, है ना. वेल, मैं आपको बता दूं और एक चीज़, हमारे दोस्त रवि, वो उन्होंने हमें टेक्स्ट किया कि वो बताना चाहते हैं कि उनके दो दोस्त हैं, और क्योंकि उन्होंने अभी अभी सुना कि जब मैंने कहा कि आलसी दोस्त काफ़ी ज़रूरी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में दो कलीग्स थे, एक दोस्त का नाम है संतोष, और जिन्हें वो बुलाते हैं चिंता गुरु. आई डोंट नो, चिंता गुरु आई थिंक वो बहुत ही टेंस मोड में होते हैं, ऐसा कुछ होगा, हमेशा शायद चिंतित रहते हैं. मैं सोचती हूँ ऐसा होगा कुछ. और उनके एक और दोस्त हैं, उनका नाम बताया है इन्होंने परेश, जो कि हु इज़ जीता लाल, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट बहुत ही आलसी दोस्त हैं उनके. तो ये हैं उनके दोस्त, और उन्होंने हमें टेक्स्ट किया है उनके बारे में कि देखा, एक दोस्त हैं जो कि हमेशा चिंतित रहते हैं, और एक दोस्त है वो बहुत ही आलसी है. क्या मतलब, सोचो यार कि इन दोनों की जोड़ी जब बनेगी, एक चिंतित और एक आलसी, तो क्या ही बात होती होगी. चिंतित दोस्त बताएगा अरे जल्दी कर ये काम है वो काम है, और आलसी बताएगा कर लेंगे यार, रख दे रहने दे. यूँ होती होगी इनकी बातें फॉर श्योर. पक्का बहुत ही मज़ा आता होगा. अगर ये कोई तीन दोस्त है तो तीसरा सोचता होगा भाई तू चुप हो जा, चिंतित दोस्त को बोलता होगा, और आलसी दोस्त को बोलता होगा अरे कर लेना वो जो बोल रहा है ना. डेफिनेटली होगा. आई कैन इमेजिन किस तरीके की कॉन्वर्सेशन हो सकती है इन दोस्तों के बीच में. वेल, थैंक यू सो मच रवि फॉर टेक्स्टिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा. और आज हम दे रहे हैं प्रभुदेवा के लाइव डांस कॉन्सर्ट, जो कि होने वाला है राली मेमोरियल में ऑन अगस्त 9th, विच इज़ ऑन संडे, सो डोंट मिस. और हम देने वाले हैं उसके टिकट्स फॉर लकी विनर्स फॉर इन टुडे शो. हम शो के लास्ट में हम अनाउंस करेंगे कि कौन है वो लकी विनर. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं टू गेट द टिकट एट 9199998595 पर, और जीत सकते हैं प्रभुदेवा कॉन्सर्ट के टिकट. तो दोस्तों, देखते टाइम इज 6:47. वेल, हम और एक सेगमेंट लेंगे और उसके बाद हम फिर मिलेंगे ऑन थर्सडे दूसरे टॉपिक के साथ. वेल, आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में ये ट्रिप्स का जो है वो पक्का एक जुनून होता है, वो यू नो ट्रिप पे जाना, नहीं जाने वाला ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में कि मुझे कहीं नहीं जाना है ना. डेफिनेटली ऐसा होता ही होगा. मैं तो बहुत जगह गई हूँ, और मैं जहाँ भी गई हूँ हर जगह में एक खासियत है, और मैं कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं रिसेंटली जब इंडिया गई थी तो मैं गई थी काशी, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके. यू नो आई मतलब जो जैसे कहते हैं ना, यू शुड ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ. तो वहाँ जब जाओगे ना, अगर आप जो नहीं गए हैं स्पेशली, अगर आप कभी जाओ, और जो लोग गए हैं आई एम श्योर उनको ये एक्सपीरियंस हुआ ही होगा, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है. आप वहाँ जाते ही ना ऐसा सोचोगे कि बस यही है लाइफ. जिस तरीके से गंगा बह रही है वहाँ पे, और जिस तरीके से हम वो घाट पे बैठते हैं और बस आप देखते रहते हो गंगा को वहाँ बैठ के, और गंगा आरती, क्या बताऊँ मैं, उस जगह में ही कुछ जादू सा है. और जहाँ पे हम थे तो वहाँ के होटल मैनेजर, उन्होंने हमें बताया कि हम जब पूछ रहे थे कि यहाँ का जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं, यू नो वी वर सो एक्साइटेड, और उस एक्साइटमेंट को उन्होंने पहचाना, और उन्होंने कहा कि मैडम बनारस ना भागता नहीं है. दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी मैन, लाइक बनारस भागता नहीं है, आराम से दर्शन कीजिए, आराम से घूमिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, यहाँ पे शॉपिंग करिए, इस तरीके से उसने मुझे बताया.

मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन, यू नो मैडम, बनारस ना कभी भागता नहीं है. क्या बात है. अगर आप में से किसी ने सुना होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा. आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डीएम और इंस्टाग्राम एट रेडियो नारा यूएसए पे, या फिर आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं एट 919-999-8595 पर, कि अगर आप गए हैं काशी तो ज़रूर हमें शेयर करिए कैसा लगा आपको, यू नो क्या थी वो फीलिंग. ऑफकोर्स लॉर्ड शिवा, मोस्ट पावरफुल गॉड, क्या बताओ मुझे, मेरे को तो ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया है भाई काशी से, इस तरीके का बोलूँगी मैं, यही लाइन है मेरे लिए ना, बहुत प्यार हो गया है मुझे काशी से. पहली बार गई थी मैं, और आई थिंक ये इतने सारे इंडिया के ट्रिप में ये इंडिया का ट्रिप काफ़ी खास और काफ़ी खास है, मैं बहुत ही दिल के करीब. और मैं मेरे पेरेंट्स के साथ गई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. यू नो एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये ट्रिप में ना मेरे साथ और एक चीज़ भी मैंने नोटिस किया कि जब हम छोटे थे तो पापा मम्मी हमारे सामान लेके हमें यू नो घुमाने लेके जाते थे, राइट, हमारा बैग उठाते थे. दे यूज़ टू लाइक ट्रीट अस लाइक, मतलब अभी भी ऑफकोर्स, मतलब प्रिंसेस थे हम, लाइक प्रिंसेस हैं, लाइक बच्चे जो हैं वो उनके प्रिंसेस हैं या फिर प्रिंस हैं, सब वो देख लेते थे हर चीज़, यू नो ए टू जी. दे यूज़ टू टेक केयर ऑफ इट, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट, आई वुड से नॉट इन द पास्ट, बट उसी तरीके से जब इस ट्रिप में मैं और मेरे पेरेंट्स गए ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैं उनको लेके जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ उनकी उनके बैग्स वगैरह मैं उठा रही हूँ, और मेरे पापा बोलते जा रहे हैं कि बेटा दे दो, बेटा बैग दे दो, वो भारी हो जाएगा, दे दो दे दो. एंड आई वाज लाइक नहीं पापा, आई कैन होल्ड इट. ऐसा ये वाली ऐसी ऐसी छोटी छोटी यू नो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे जब मैं वापस आई और मैं जब सोचने लगी कि क्या क्या किया मैंने वहाँ पर. तो इट वॉज सो अमेजिंग टू ट्रैवल विथ पेरेंट्स, एंड आई हैड ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग विद पेरेंट्स. और जब मैं कंपेयर कर रही हूँ ना, आई वॉज जस्ट एनालाइजिंग कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे लेके जाते थे ना पापा, मुझे ऐसे करते थे, और व्हेन आई नाउ जब मैं उनके साथ गई तो जब मैं जब सब कुछ देख रही थी कि चलिए खाना खा लीजिए, चलिए यहाँ चलिए वहाँ चलिए, एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड देन आई वॉज लाइक वाओ, मतलब क्या फीलिंग है यार जब आप अपने पेरेंट्स यू नो पेरेंट्स को देखते हो, एंड और जब आप कंपेयर करोगे बचपन में वो हमें कैसे देखते थे, तो बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत प्राउड फील होता है टू बी ऑनेस्ट. बहुत ज़्यादा मेरे को खुद पे बहुत अच्छा लग रहा था कि आई एम एबल टू, आई एम सो ग्रेटफुल कि यू नो आई वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ देम व्हेन वी वेंट फॉर अ ट्रिप, एस्पेशली टू काशी. एंड आई वुड डेफिनेटली से जो नहीं गए हैं, जो गए हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर जाइए एंड यू गेट दैट एक्सपीरियंस. ये बोलने से पता नहीं चलता है वो एक्सपीरियंस क्या है. आई थिंक यू शुड यू नो फील दैट, यू शुड गेट दैट एक्सपीरियंस बाई योर सेल्फ. सो डेफिनेटली जाइएगा हो सके तो. वेल, इसी के साथ आज का शो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:52. मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं. अगर आपके पास भी ऐसी कोई मज़ेदार बातें हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस है या फिर ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो रेडियो नायरा इज़ ऑलवेज हियर टू लिसन टू यू ऑल. एंड जिस तरीके से आप हमें सुनते हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हैं आपकी बातें सुनने के लिए. तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं एट रेडियो नायरा यूएसए, और फेसबुक पे भी एट रेडियो नायरा यूएसए पे आप हमें डीएम कर सकते हैं मैसेंजर पे, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं एट info@radionaira.com, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं एट 919-999-8595 पर कभी भी. ओके, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. और आप हमें हमारे वेबसाइट में भी सुन सकते हैं, हमें www.radionaira.com पे स्ट्रीम होता है, तो फिर आप ज़रूर आप हमें वहाँ से सुन सकते हैं, वेबसाइट से सुन सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप रेडियो नायरा ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर. आप वहाँ से डाउनलोड करके कहीं भी हो आप हमें सुन सकते हैं, और आप हमें सुन सकते हैं एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अलेक्सा हो या ओके गूगल हो या फिर हे सिरी हो, कुछ भी हो, आप हमें कहीं भी कभी भी कहीं से भी सुन सकते हैं. वेल, इसी के साथ चलिए आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है, और कल है ज्योति का शो, और आज हमारे कॉलर्स, वेल आई गॉट टू कॉलर्स, सो डेफिनेटली आई एम गोना गिव देम द लकी विनर्स. हमारे हैं शेखर और द कॉलर्स, सो टू कॉलर्स वी गॉट, सो वी आर गोइंग टू गिव
the Prabhu Deva's live dance concert ticket to them. So I'll ask my team to contact them. So are you listening, Shekharji? And I think Sanskarji, I forgot the name, but however, yeah. So definitely our team will reach out to you and give you the Prabhu Deva live show tickets. Thank you so much, guys, for calling. And thank you so much, everyone. Thank you so much for listening to me, my show, Hello Vaishnavi. And next week, I'm going to be again there on Thursday between 5 p.m. to 7 p.m. और कल आने वाली है हमारी प्यारी सी ज्योति और उनका शो है आज की शाम ज्योति के नाम. Well, उनके शो में भी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव प्रभु देवास लाइव डांस कॉन्सर्ट के टिकट्स. जो भी लकी विनर है, लकी कॉलर को मिलेगा टिकट. तो प्लीज़ प्लीज़ कॉल करिएगा कल उनके शो में. उनका शो होने वाला है बिटवीन 5 p.m. टू 7 p.m. तो ज़रूर वेट करिए कल तक. वेल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा की तरह, जैसे मैं कहती हूँ, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ, वैष्णवी.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।